आकाशवाणी इम्फाल ङाङोम किरण पाउ पाजरी अहानबद मर वैब पाउ मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हायरी साखत थौरांग थबक सिंगा उमंग अमदि लौफम सिंगाक सेंदुन थंबगी थबक्का थोंग मानन पाइखतकनी सेक्युरिटी फोर्स न कांगपुपि जिल्लादगी नोमै तारा निपान याउना खुचु खुलाई क्या मरुम फागतले अमशुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हायरी भारत असि मालेमगी शक्ति लैरब लैबाक अम ओयरकनबगी माइकैदा लेप्तन संशिलकली मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हायरी साखत थौरांगी थबक सिंग अमसुंग उमंग अमदि लौफम सिंग ङाक सेंदुन थंबगी थबक थोंग मानन पाइखतकनी मुख्यमंत्री ने थादोरक पुवारोल अमद हाय मणिपुर दा लम सिजिनबगी मोंग मतौ सिंग दा अहोंगु पुरकनबगी मतांग दा इम्फाल लैब महाक की सेक्रेटरीयत दा लैंड रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबो ऑफिसर सिंग उनदुना हिरमसिगी मतांग दा हन्नियंग सिनबगी मिफुम अमा पांगथोखरे साउख थौरांगी थबक सिंग सुपाइखतब यादे अदु मोइनमक उमंगी लम अमसुंग लौ सिंग तौनारिबो मफम सिंग ङाक सेंदुन थंबा हायबसे सुटाङाय फदे मरमदुना लम सिजिनबगी मतांग नमि यंग सानब थौसिल थौरांग अमक पाइखत पाइबसे तौद्रब यादरब यामनमक तङाय फदब अमानि मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सभापति ओइदुन पांगथोखिबा हाई लेवल टास्क फोर्स की मिफमना राइजासिर सिजिनब कोननब येरुम मिट ङा संगोम अमसुंग अतै मरी लेनब पोथोक सिंग मरांग काइन पुथोकनब अमसुंग मणिपुर की वांग मदा थादोक पंगमनब की मतांग द खनक्रे खोंथांग असि डोनर की रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की मखाद पहित कदबनी वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी विभाग की मकोक थोंब ऑफिसर सिंग सुनदुना एस ए एस सी आई स्कीम चनहनब की मतांग नसु हन यंगशिन की उनबरद राजासिद विभाग असिन पीरिब सर्विस सिंग हेन फगत हनब येन गानु अमसुंग ओक नसिंब लोइब की फियम फगत अनदुना राजासिग सेल थोंग फियम फगत हनब द मतेंग पांगनन वफम सिंग सु खनकी इंटरनेशनल ओलंपिक डे लिसंगनि कुंतर कुमारी लेनना मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान याइफ पाउजल पिरकली वारोल अमद मुख्यमंत्री न हाय कोमसि सही की पालन नुमित असिग हिरम नहाक नमसि तौब ङमगनी हायबसिना अखोय की इसाद लेरम बचिंगना बसिं कोहनदुना शाना खोनब मसुंग साजल तौदुना इशाना इशाबो थाजब हेंगत अनम ङमलगनी अखोयना शाना खोनबगी हैथोय सिंथोय बसिं योखतुना हेन नमसिक मंगाल थोलसि मरुप मपांग ओइबगी वाखलोन अमसुंग अमन अमो बुइकाई खुमनबगी वाखलोनसु हेन फाहुनब ओइरसुनु हायरी सेक्युरिटी फोर्स न कांगपोपु जिल्लादगी नोमै तारा निपान याउना खुचु खुलाइ क्या मरुम फागतले कांगपोपु जिल्लागी मनुंग चन लैबा लैलोन वाईफाई लैलोन मुनलुई मोलहोय पी मोल्डिंग लैलोल खुनौ अमसुंग अकोइबो मफम सिंगदा मणिपुर पुलिस सीआरपीएफ

0: ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯔꯃꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯚꯥꯏꯂꯤꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯔꯦ, ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪꯔꯥꯖꯤꯗ ꯄꯥꯎ, ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: ꯅꯃꯁꯀꯥꯔ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯠ ꯀꯦ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में

0: अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
8: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
9: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता, बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है, जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं, यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है.
9: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
2: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President. Today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
9: News Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
10: Finally, the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
11: Designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves with a very, very low cost.
12: ये 10-12 वर्षापासून मी तो शिकायला लागलो पण आता मला इकडे व्यवसाय नाही.
13: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
14: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me, you should become a doctor or do some research in this field.

चिंबल मैयागी सम्रू कोईराव नभी मिचना तथक नभी मिटेंग असैब कयागी फजबगी सैथाफमनी नुंशीब कयागी हौरकफमनी थमोई कयागी लायोमदा इसिंदुना थमनाबा कौमदना थमोई दल लेहौबा गाक्तनी नुंशी लेनमना अहांगबदा तिनख्रबसू।

0: आकाशवाणी इम्फाल केन्द्र के कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को थुपचुंग गीता का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक खास शख्सियत का साक्षात्कार कर रहे हैं जिनके नाम है सुश्री लाइमयुंग शुभा रानी। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुजन साहित्य एकेडमी लोधी रोड नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किए जाने वाले साहित्य रत्ना राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2024 में साहित्य के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुमारी शुभरानी लाइमयुम को इस पुरस्कार से नवाजा गया उनकी किताब नाथई खरबा इचेल के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपने परिचय दे सकूं।
0: जी, तो शोभा जी, आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी जीवन में कीमती चीज मिलती है, इससे ज्यादा खुशी कुछ और नहीं है, इसलिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को और हमें बताइए कि आपको काव्य रचना या कविता लेखन की प्रेरणा कैसे जागृत हुई? ये मोटिवेट जो है ना कि आपको कविता लिखना है, ये कहाँ से आपके मन में आया?
1: बचपन से लेके आज तक जी बहुत सी घटनाएं घटती हैं
0: जी,
1: और समाज की संस्कृति, भाषा, बोली, वाणी, आपसी संबंधों में प्रेम की ताजगी सब मुझे मोहित करती रही है
0: जी।
1: इससे मुझे साहित्य रचने की प्रेरणा मिलती है
0: जी। फिलहाल आप किस कार्य पर मशरूफ है? क्योंकि जो लेखन के क्षेत्र से जुड़े होते हैं वे कभी खाली नहीं बैठते हैं जी।
1: हाँ,
0: तो वे कुछ कुछ न कुछ अपनी लेखन का जादू बिखरने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो फिलहाल आप अपने आप को कैसे मशरूफ रखते हैं?
1: हाँ, मुझे बहुत काम है, मगर इतना मुझे बिजी होकर भी मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक लेखिका हूँ
0: जी,
1: इसलिए मरती दम तक भी लिखकर ही रहूंगी, ऐसे सोचकर समय निकालते हैं
0: जी। आपको मतलब लिखने का शौक है तो आप किसी भी तरह से अपने लिए समय निकाल लेते हैं।
1: हाँ
0: जी। आपने भारत की राजधानी नई दिल्ली लोधी रोड वहां जाकर आपने पुरस्कार प्राप्त किए, यूं कह सकते हैं कि वहां एक नया माहौल है, नए लोग हैं, क्योंकि आप मणिपुर राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब आप यहां के रहने वाले हैं, तो आपने वहां जाकर पुरस्कार प्राप्त किया, उस वक्त आपको कैसा?
1: बहुजन साहित्य अकादमी ने पुरस्कार के लिए 2024 में
0: जी
1: उसी साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए एप्लीकेशन भेजने के लिए बुलाया गया। यह सब जानकारी मुझे न्यूज़पेपर से मिले।
0: आपको न्यूज़पेपर के जरिए, मतलब अखबार के जरिए आपको पता चला?
1: से मिला। हाँ।
0: जी।
1: वही एड्रेस में एप्लीकेशन भेजा
0: जी।
1: मेरे कविता की किताब नाथई खरबा इचेल दिल्ली तक भेजा है
0: जी।
1: एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल करके कहा कि मुझे भी बहुजन साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिलेंगे 2024 12 दिसंबर को अवार्ड लेने के लिए।
0: आप
1: मैं वहां गए, वहां उस दिन वहां हॉल में भारत के सभी राज्यों के लेखकों के साथ मुलाकात भी हुई।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको।
1: हाँ, हमें खुशी खुशी बातचीत भी करते हैं।
0: अच्छा, आप लोगों ने बातचीत भी किया, मिले आप सभी से?
1: हाँ। थोड़ी देर के बाद स्टेज में मुझे बुलाकर गुरु नल राधा कृष्णा नेशनल प्रेसिडेंट BSA ने अवार्ड दिया गया।
0: BSA मतलब बहुजन साहित्य अकादमी
1: प्रेसिडेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट है
0: जी।
1: और मुझे 5 मिनट मन की बात बोलने का अवसर भी प्रदान किया। उस दिन मुझे खुशी की

0: ठिकाना ना रहा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उस दिन।
1: अच्छा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लोगों के सामने में आपको मतलब कुछ कहने का अवसर जो प्राप्त हुआ
0: वही मिला,
1: तो ये तो बहुत अच्छा लगा। शुभा जी, हम आपके कविता नाथईखरब इचिल कविता के बारे में कुछ आप संक्षेप में आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि इस कविता में मतलब, या यू कहे कि आपने मतलब इस कविता की जो रचना की है इसके माध्यम से आप हम मतलब पाठकों को क्या कहना चाहते हैं?
0: जो मैंने वो नाथईखरब इचिल मेरी कविता में मैंने वो उसी टाइटल में ये कविता लिखा है
1: जी।
0: उस कविता में ऐसे ही जो कोई माँ बाप ने अपने बच्चे को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चे को खुद पैरों से खड़े भी करने देते
1: जी,
0: माँ बाप भी बुरे हो गए
1: जी,
0: लेकिन मेरी कविता नाथईखरब इचिल इस कविता में मैंने ऐसे ही कह दिया कि इस टाइटल में जो माँ बाप ने मेरी कविता नाथईखरब इचिल में जो माँ बाप ने अपने बच्चे को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चे को खुद पैरों से खड़े कर सकते हैं। माँ बाप बुरे हो गए लेकिन कोई बच्चे बुरा माँ बाप को सेवा करना नहीं चाहता, वही
1: मतलब इस कविता में आपने किया है।
0: हाँ,
1: ये है कि बच्चे माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने जब अपने माँ बाप को जब उनकी जरूरत होती है तो वो छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते। इस कविता के द्वारा आप ये हमारे पाठकों को बताना चाहते हैं कि हमें अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, बुढ़ापे में उनके लाठी का सहारा बनना चाहिए।
0: जो वो मैं जो इस कविता में ऐसा लिखा वो सभी बच्चे तो नहीं है
1: जी, मतलब
0: वो
1: कुछ कभी लोग
0: भी कुछ लोग ऐसे
1: बहुत सारे लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप के मतलब सेवा करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। जब उनकी जब होती है तो उनको खास अपने बच्चों की जरूरत होती है पर उस वक्त उनको छोड़ देते हैं। ये आप अपनी कविता में कहना चाहते हैं?
0: हाँ, वही करते हैं। तो ऐसी कोई बच्चे ऐसा भी करते ना, वो नहीं करना चाहिए।
1: मतलब आप ये पाठकों से ये कहना चाहते हैं कि हमें इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि उनका साथ देना चाहिए।
0: माँ बाप के साथ देना, उनकी सेवा करना वही सही है
1: जी। बहुत अच्छा। अभी तक आप कितने किताबें लिख चुके हैं और कितने प्रकाशित हो चुके हैं आपके किताबें?
0: मेरा एक कविता की किताब नाथईखरब इचिल प्रकाशित हो चुका है
1: जी,
0: और अभी आगे प्रकाशन करने के लिए छोटी छोटी कहानियां और कविता भी लिख रही हूँ। ये भी मणिपुरी भाषा में,
1: मतलब आप मणिपुरी भाषा में लिख रही हैं?
0: हाँ, ये पूरा नहीं हो सकेंगी या नहीं पता नहीं
1: क्यों
0: मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन ये लिखने में तो थोड़ा समय लगेगा ना। इसलिए मैं किसी साल ये 2025 में पूरा होगा या नहीं, ये मैं इसी साल में प्रकाशन करने के लिए तो
1: सोच रहे हो। हमें और हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
0: मेरे परिवार में पिताजी और माँ है और हमारे 6 बहनें हैं और एक भाई, सबसे छोटा भाई है, वो भी रेडियो का अप्रूव आर्टिस्ट है सितार में, और मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज में वो भी काम किया, अब तो नहीं है, वो भी सितार के लेक्चर है।
1: आप अपने पिताजी के नाम भी बताइए।
0: मेरे पिताजी का नाम लाइमियम साहब शर्मा, कोई लोग तो उसको सितार साहब ऐसे लाइमियम ओम बी ई बी एम।
1: आप अपने भाई बहनों में कितने स्थान पर हैं आप?
0: मतलब? मैं थर्ड में हूँ।
1: अच्छा, और आप अभी अभी क्या कर रहे हैं, मतलब अभी वैसे आप कहीं कुछ और भी करते हैं?
0: मैं अभी प्राइवेट स्कूल में हिंदी टीचर के काम कर रही हूँ,
1: हिंदी विषय पढ़ाती
0: हूँ। पढ़ाती हूँ।
1: अच्छा,
0: और इसके साथ साथ वो साहित्य में भी काम करती हूँ, लिखने का काम।
1: तो क्या आप अभी भी कुछ रचना लिख रहे हैं? अभी आप कुछ कर रहे हैं?
0: मैं लिख रही हूँ, मैं ये नाथईखरब इचिल ये तो कविता है वो,
1: इसके अलावा आप?
0: मैं इसके अलावा अभी वो मैंने छोटी छोटी कहानी भी लिखते हैं,
2: अभी लिख रहे हैं?
0: हाँ लिख रहे हैं,
2: प्रकाशित नहीं हुआ?
0: नहीं हुआ, वो अच्छा। वो भी प्रकाशित करेंगे, करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
2: पूरा हो लिखना मतलब पूरा हो चुका?
0: पूरा तो नहीं हुआ, वो एक किताब होने में ना वो कम से कम
2: पेज,
0: हाँ समय लगते हैं। वो एक पूरा एक किताब होने में वो पेज में तो बहुत सी कहानी होगा ना, वो उसके पूरा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
2: अच्छा, तो कब तक हो
0: सकता है? मैं तो नहीं हो पाएंगे, मुझे बहुत सी बिजी होते हैं ना।
2: अच्छा, बिजी है क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाती भी हैं हिंदी का विषय,
0: घर का काम भी बहुत है, इसलिए।
2: अभी आपने कुछ कहानी के कुछ नाम भी सोचा है या अभी सिर्फ लिखना शुरू किया है आपने?
0: नाम तो नहीं सोचा, वो छोटी छोटी नाम तो मुझे याद है।
2: अभी जो आपकी कविता है जिसके लिए आप किया गया आपको, और नेपाल के काठमांडू राजधानी में भी, नेपाल के राजधानी काठमांडू में भी आपको इंटरनेशनल
0: आइकॉन
2: अवार्ड से नवाजा गया, तो आपकी जो रचना है यानी कि जो कविता नाथई खरबा इचेल, इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं?
0: वो नाथई खरबा इचेल है ना, वो कविता की किताब है ना, इसी के टाइटल है। इसी में एक कविता भी मैंने, वो माँ बाप ने वो बच्चे को जन्म देते हैं, वो जन्म से, हाँ जन्म देने के बाद ही बच्चे को वो बड़ा होने तक ही
2: पाल
0: पोषा वो कुछ न कुछ तो बनाया, बड़ा करके अकेले ही खड़े पैरों तक खड़े होना सिखाया और खड़े हो पाए वो बड़े, और उसका एक फैमिली हो गया ना, उसके बाद माँ बाप को छोड़ दिया,
2: माँ बाप को ठीक सहायता नहीं करना,
0: नहीं करते,
2: छोड़ दिया।
0: वही
2: मतलब इस कविता के माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं कि हम जिन्होंने हमें पाल पोस कर, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, हमें उनके लाठी
0: बनना चाहिए। मतलब इसी क्यों, इसी कविता क्यों लिखा है कि वो ऐसा ही, सब लोग तो नहीं है दुनिया में, कोई लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वही करना नहीं चाहिए,
2: नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि हम उनके बुढ़ापे का सहारा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। मतलब अपनी कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं ना। हमने सुना है कि आप, जैसे अभी आपने बताया कि आप स्कूल में भी हिंदी विषय पढ़ाती हैं, तो आपकी रुचि हिंदी में भी है, आप हिंदी सिनेमा, हिंदी गाना सुनना पसंद करते हैं?
0: हाँ करती हूँ।
2: अच्छा, कोई ऐसा गीत जो आप सुनना चाहते हैं हम आपको सुनवाएंगे?
0: बहुत सी तो फिल्म देखते हैं, लेकिन मैं तो बहुत पुराने, ज्यादा पुरानी तो नहीं है, वो सिनेमा अभिमान फिल्म है ना, वो अमिताभ बच्चन और
2: जया
0: बहादुरी, वो दोनों का है, उसी में तो जया बहादुरी गा रहे हैं ना।

0: दोस्तों, शोभा रानी जी के हम सब ने अभिमान फिल्म से ये गीत सुना। इस गीत के बोल लिखे थे SD बर्मन ने और संगीतबद्ध किया था मजरू सुल्तानपुरी और इस गीत में आवाज दी लता मंगेशकर। अब अगला प्रश्न फिर मैं आपसे पूछती हूँ।
1: आप अपने पाठकों को आकर्षित करने और उनका ध्यान बनाए रखने के लिए आप कौन सी टेक्निक अपनाते हैं अपनी रचना लेखन में? जैसे आप कुछ कविता लिख रहे हैं, जैसे अभी अपनी कविता लिख रहे हैं या कोई अभी कहानी भी लिख रहे हैं आप, तो आपके पाठक जो पढ़ने वाले पाठक है उनका जुड़ाव रहने के लिए आप कैसा मतलब टेक्निक अपनाएंगे?
2: सोचने में तो बहुत से गुरुजनों की किताबें हैं, हम लोग वही पढ़ते हैं। नए टेक्निक में तो वो पहले पुराने टेक्निक से थोड़ा चेंज होना चाहिए,
1: हटकर होना चाहिए।
2: हाँ हाँ, क्योंकि उसमें जो अक्षर वो डालते हैं ना, चेंज होकर वही लिखना चाहिए, नए नए शब्दों का चयन करके लिखना चाहिए।
1: अच्छा, आप पाठन की सफलता को कैसे मापते हैं?
2: मैं अभी तो सफलता नहीं हुए
1: जी,
2: मेरा मतलब मैं तो सिर्फ लिखना शुरू किया।
1: हाँ, शुरू है। हाँ, पहले पायदान पर है।
2: हाँ, तो मुझे भी ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो सिर्फ अवार्ड तो मिला है मुझे
1: जी।
2: मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत सी भी अवार्ड मिलने के लिए मैं नहीं लिखती
1: जी।
2: ये तो सिर्फ मेरी वो मेहनत की है
1: जी जी।
2: हाँ वही, लेकिन मेरी जो खुश है मैं कब तक
1: जीऊंगी
2: ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं मरते दम तक कविता लिखते ही रहूंगी और कहानी भी लिखूंगी, वही मेरे मन में है।
1: हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा और भविष्य में भी आप अपनी रचना लिखते रहे, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद।

0: संदोक्तुने तहंजरी बसी आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक मखा तब थौरम सिंगी दमकता लौरेंबम टूरिस्ट खुचि नजरी
1: प्रिसला थोंगामबु थागचरी लोइनना आकाशवाणी इम्फालगी थौरम ताबिरमलिबा मयाम पुनमकपु पुंफमासिदा अमुक हन्ना थराम नोकचरी नोलुकचरी

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
2: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हां चल कर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: अरे बसंती, बेटी तू
1: तो
0: बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना।

0: जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
1: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
0: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।

तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।

0: है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
1: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो। चलो
5: चलो चलो,
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
0: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सेल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: ताबीरे एनसीईआरटी की तेंबांग लुइनना संदोक चबा उमंग अदोम ना थोरम ताबीरे बसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी।
4: Electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9S with a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for test drive today and bring home your dream car.
3: Akash Bani Imphal, Hojik Tabirasi Science Magazine Thoramda, Ayinga Sagi Chang Hunglakpa Masung Dengi Laina. Ayiba, Dr. R.K. Lokeshwari, Amasung, Miyoibagi Punsi Marup Oiriba, Khoigi Punsi Khongchat Hariba Hiramasida, ICARKBK Ukrulda, Subject Matter Specialist, Plant Protection Oibiriba, Dr. Ningthojam Ajit Kumarga Unaduna Wari Saba, Unabiriba, Rai Chanda Jingtham, Thoram Puthokpa, Rai Chanda Jingtham.
5: Lanthok Cheri, Science Magazine. ngasigi thoramda thamjari aing asagi chang honglakpa amasung dengi leina amadi miyor begi punsi marup oiriba khoigi punsi khongchat haiba hiram sida plant protection indian council of agricultural research krishi vigyan kendra ukhrulda subject matter specialist oiriba dr ningthojam ajit kumar ga ekhoigi mihut raichandra jingthamga unadunu wari saba

नाथयो नाथयो सीतापति नमो नमो। प्रभु रामचंद्र ना उत्तराकांत की मनुंदा अगस्त मुनिदेव की मरीदा रावण कुंभकर्ण सुमनखा अमदी बिभीषण सिंह मनाव मरी कमदों पोखिबगे हाइबगी वारी मतांग अदु अगस्त मुनिदेव की मरीदा श्री रामचंद्र लिबियो हाइदेन हंकचे। प्रभु रामचंद्र की वाफम अरु तारुरेगा अगस्त मुनिदेवन श्री रामचंद्र की मरीदे बुंगा रघुमनी हारी बुवारी अदु ऐ बुंगन तानिंग बनीना पुनिंग संग तारो मखा की प्रसंग ऐतिहाय मुनि ऐना रघुमनि की चोरों हंकचरगे। स्वर्ण भूमि सना लंका लेबाग सी विश्वकर्मा हाइन कौबदुंगलब देवतादुना निंथीजना फजन सागरबदुंगलब लंका लेबांगनी हाइब था कुंग मंगा पाकपा सना लंका लेबाग सिदा अदुंगलब कुबेर हाइन कौबा विश्वम ब्राह्मण की मचा गंधर्व निगो लता की गर्भद जन्म ओइबा कुबेरना ब्रह्मा निंजबगी बोन मरम ओइरगा नुंगाइन मरुद सना लुपा धोलन की मपू ओइदना कुबेरना लंकाद नुंगाइन पाले असुमन लेरिब ब्रह्मान पीबीब ब्रह्मान सेम ग्रब पुष्प रोल हाइन कौ ग्रब कांगा अंगु मरीन सिंगबा सर्ग मर्त पतान त्रिभुवन मरोल अहम मसीद यौनिंग बद यौब गंबा ब्रह्मन द मिकुप्त कोइब गंबा हाइब ब्रह्मान पीब पुष्प रोड दोलाय सि तोंग दन मनिंग मखा तमना कुबेर न नुंगाय द लंका लिबा गसि पान बसे कना न कलई विष्णु बु येंग न ब ओइरुबा विष्णु गु गिलान द माइ थीब फंगदना विष्णु न मर्त भूम द लैब तारगदी सोमाली अमदि लैरिबा माली अमदि मैलाबा लैरिबा हिंचावा नसिनाव अहुमसि हटकनि यदन आइ बुंगो सिरि हरि न मरुदा ताकपि बदगी हरि गि सक्र की बन मरम ओरे रग लंका लिबाग अदु थादु एरगा आ पता लिबाग द लोतुन लैग्रबा माली सोमाली मैलाबा लैन को ब हिंचावा मसि मनाव अहुमदो वाना पतान गि लिपा की मनुंग अदु द लै अदुना लेरिब कुबेर न लंका दे मनिंग मखा तम न पान बसी उब कांद कलक तना बसी मनाओ अहम मद वाता नहीं अखोइन वान सेमम बा लंका ले बा गसे कुबेर न मरुद मागी ओइदना नुंगा ये फने मनिंग मखा तम न पाले हाई बे खोइन वान सेमजर ब लंका ले पा गसे अमुक तंग अखोइ गु ओइन बसी करी उपाय तौ सिगे दे न मसी मनाओ अहम तानर पकाल रु ददी माली सोमाली मैलाबान अहम अदुन खनरे अदु सुम दौरसी माली अइगे लेरिबा दुंगलाबा ईसा नुपी निकासा हाइन कोबि अदुंगलाबा ईसा कैनासे मसी विशेषर्म ब्राह्मण लुद थाजरेसी ईसा कैनासे न लोनबी हाइबदु ओइरगा अदुंगलाबा ईसा गी अदुंगलाबा गरबदगी अदुना मचा दु फंगजरगा मदुना कुबेर बु जोय तौरेरगा सना लंका लेबाग से अमुक तंग दो मुन्नब होन सियदन सुम दो दन मसी मनाव अहुम मदो वा तानरे बंगवा रघुमनी सिगी तुंगदा मैलावान फरि दो बतार गदि मसा दा इग्या पीर गे दन मसाई बेमा निकसा कौशली बेमा निकसा लाव इपा गे नाकता इपा गे वारी मसासी निकासा कैना चंघलतन मापावंग द भक्ति कली पिता महाराजा ननाय कोबिब करी ताक पिगे द वनर हंकली बेमा नंग बो ऐन कोरी बसे अते यमगी नति अदुना ऐन वारी पान वान सेमजर मलंका लेबा ग से अदुंग लब कुबे न मनी मखा तमदन पान खरी मदम मदुन ने इपागी कुनुंग इपागी लेपा ग से अमुक तुम बुन मंगम नबा नहा ग से चलु विश्वसन ब्राह्म होलदुन तोप तौरीब जगे फमीब बोलदुद चलेरगने नंग विश्वसन ब्राह्म होलदुद पुत्र द्रान नचा धारा दु निरुसो करीगुम्ब मुनि यदुन सांबिद नचा धारा फंगजब तारगदी
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯤꯄꯥꯒꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯏꯄꯥꯅꯅꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕꯔ ꯌꯦꯡꯒꯦꯗꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯄꯤꯇꯥꯖꯤ, ꯅꯥꯏ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯤꯀꯁꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯥꯖ ꯕꯂꯥ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯠꯀꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯝꯚꯥ ꯇꯦꯂꯣ ꯇꯃꯥꯗꯒꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕꯤ ꯏꯕꯦꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯥ ꯚꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯣ ꯂꯩꯇꯦꯡꯉꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯨꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯥꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯦꯔꯒ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯤꯀꯁꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯟ ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯇꯝꯗꯅ ꯂꯦꯡꯏ ꯕꯨꯡꯑꯣꯔ ꯘꯨꯃꯅꯤ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯞ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯩꯒ ꯐꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯩꯒ ꯐꯝꯕ ꯃꯨꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯖꯩꯒ ꯀꯥꯍꯦꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯄꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯖꯩꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯍꯜꯂꯒꯦꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯩꯒ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯡꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣ ꯑꯗꯨ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯔꯝꯚꯥ ꯇꯤꯂꯣ ꯇꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯒꯨꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕꯤ ꯁꯠꯀꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯨꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯛꯇꯆꯨꯗ ꯁꯥꯎꯗ ꯁꯥꯗꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯇꯤꯟ ꯃꯣꯅꯣꯍꯣꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯔꯥꯖ ꯕꯂꯥ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯎꯕ ꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥ ꯅꯪ ꯗꯦꯕ ꯃꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯥꯏꯀꯁ ꯃꯌꯥꯔꯥ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯩꯒ ꯚꯪꯒꯣꯂꯤꯕ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯕꯂꯤ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯣ ꯀꯝꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯀꯥꯜ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯤꯀꯁꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯔꯥꯖ ꯕꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤ ꯗꯦꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯒꯤꯇꯥꯟꯖꯂꯤ ꯃꯈꯨ ꯇꯔꯥ ꯂꯣꯅꯩ ꯒꯂꯦꯔꯥ ꯕꯁꯇ꯭ꯔ ꯕꯟꯙꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯐꯤ ꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧꯅ ꯐꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯦꯟꯖꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔ ꯃꯗꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯀꯣꯞꯁꯤꯟꯖꯔꯦꯔꯒ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯆꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯅꯃꯣ ꯅꯃꯣ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕ ꯅꯤꯈꯜ ꯅꯤꯔꯨꯒ ꯃꯁꯥꯁꯇꯪ ꯚꯨꯖꯤꯇꯥ ꯄꯀꯔ ꯕꯤꯝꯕꯤ ꯃꯃꯤꯇ ꯃꯇ ꯒꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯕꯗꯤꯕꯇꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯗꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯄꯪ ꯍꯣꯃꯅꯇꯤꯅ ꯁꯣꯁꯠ ꯑꯗꯤꯍꯥꯄ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦ ꯅꯅꯥꯏ ꯆꯣꯔꯣꯟꯗ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯁꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯂꯤ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯃꯥ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯅꯅꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯤꯁꯨ ꯍꯪꯒꯠꯆꯒꯦ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯌꯥꯒꯁꯦ ꯑꯥ ꯄꯇꯥꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯩꯂꯕꯥꯟ ꯀꯧꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯅꯥꯏ ꯑꯩ ꯆꯥ ꯙꯔꯥ ꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯗꯥꯜ ꯑꯃ ꯇꯪꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯒꯤ ꯆꯣꯔꯣꯟꯗ ꯅꯤꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯗꯥꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯨꯇ꯭ꯔꯗꯥꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯗꯅ ꯚꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯥꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯃꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡꯅ ꯅꯤꯀꯁꯥ ꯀꯧꯏ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯚꯛꯇꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯔꯤ ꯄꯨꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯨꯁꯅ ꯅꯆꯥ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯔꯒꯃꯔꯇ ꯄꯇꯥꯟ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯎꯔꯣꯡ ꯈꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯤꯡꯒꯣꯟ ꯀꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯪꯀꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯕꯤꯗꯚꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯀꯠꯀꯅꯤ ꯄꯨꯔꯨꯁ ꯖꯥꯇꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯀꯣꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯀꯣꯁꯥꯗꯨꯅ ꯀꯞꯇꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯒꯠꯆꯩ ꯒꯨꯔꯨꯗꯤ ꯅꯅꯥꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯔꯨꯗ ꯅꯅꯥꯏ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯪꯀꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯃꯥ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯣꯔ ꯑꯅꯤ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯗꯁꯀꯤꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯔꯥ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯟ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ ꯃꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯨꯟ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯒꯃꯇꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯚꯨꯔ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯖꯒꯠꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯤꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯆꯥ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯆꯥ ꯌꯥꯏꯃꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯌꯨꯊꯪ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯔꯒꯃꯇꯥ ꯄꯇꯥꯟ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯆꯥ ꯀꯩꯅꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯌꯥ ꯀꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯆꯥ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯆꯥ ꯏꯇꯣꯟ ꯇꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯨꯁ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯖꯒꯠꯇ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯖꯔꯣꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯤꯁꯥꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯦ
ꯁꯨꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯗꯣ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯕꯤꯁꯦꯁꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯔꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯩꯒ ꯐꯝꯃꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗ ꯁꯃꯥꯖ ꯁꯝꯄꯨꯔꯅꯪ ꯊꯥ ꯇꯔꯥ ꯅꯥꯎꯄꯨꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯇꯔꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯒꯔꯚ ꯄꯨꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯖꯟꯃ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯂꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯦꯁꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯝꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯔꯥꯕꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯔꯥ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯟ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯨꯟ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯕ ꯚꯦꯡꯀꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯐꯪꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯀꯩꯅꯥꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯁꯨꯕꯅꯈꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯚꯦꯡꯀꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯀꯩꯅꯥ ꯑꯗꯨꯃ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯣꯟ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯕꯤꯕꯤꯁꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯝ ꯀꯣꯔꯣꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯀꯁꯥꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅꯅꯕ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯨꯡꯒꯣꯔꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯨꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯖꯅꯨ ꯑꯦꯊꯥ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯤꯄꯥꯛꯇꯅ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯨꯕꯤꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯏ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯐꯪꯏ ꯏꯆꯟ ꯐꯪꯏ ꯑꯩ ꯄꯤꯇꯥꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯎꯅꯔꯨꯒꯦꯗꯅ ꯀꯨꯕꯤꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯨꯁꯄꯔꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯂꯤ ꯅꯤꯀꯁ ꯃꯃꯥꯗ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯗꯁꯤꯒꯔꯤꯕꯣ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯗꯤ ꯅꯤꯀꯣꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯖꯟꯃ ꯃꯥꯇꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯔꯥꯈꯤꯌꯥ ꯃꯇꯝ ꯕꯥꯗꯨꯗ ꯏꯔꯦꯟꯖꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯀꯔꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯕꯤꯖꯁꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯀꯁꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯁꯦ ꯏꯃꯥꯋꯣ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧ ꯇꯨ ꯑꯥꯗꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯌꯥꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯙꯧꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯇꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯈꯨꯔꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯅꯕ ꯋꯥꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯅꯝꯕ ꯙꯣꯂꯟ ꯁꯝꯄꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯨꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯨꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯩ ꯅꯙꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯥ ꯄꯇꯥꯟꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯩ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯩꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯦꯔꯒ ꯅꯙꯧꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯕ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯙꯧ ꯅꯈꯣꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯃꯟ ꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯌꯣꯗꯅ ꯃꯆꯥ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯅꯤꯡꯉꯣꯅ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯣꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤꯕ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯆꯨꯔꯣꯟꯗ ꯋꯥꯁꯩ ꯏꯃꯥ ꯍꯦ ꯁꯩꯇ ꯁꯩꯇꯅ ꯖꯅꯥꯞꯇꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯆꯨꯔꯣꯟꯗ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯀꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯥꯂꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯞꯀꯤ ꯃꯍꯩꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯙꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯨꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯨꯅꯨꯚꯨꯃꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯨꯕꯦꯔ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯔꯥꯕꯣꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯗꯣ ꯅꯤꯀꯁꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯄꯇꯤꯀ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯥꯡꯘꯔꯤ ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯡꯉꯕ ꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯪꯀꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯕꯦꯔ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯔꯦꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯇꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯈꯤ ꯁꯨꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯖꯅꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯥꯕꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯒꯨꯝꯕꯀꯔꯅ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯁꯨꯕꯅꯈꯥ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯕꯤꯕꯤꯁꯣꯟ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯁꯛꯀꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯨꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯨꯕꯦꯔ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯃꯥꯂꯣꯒꯤ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯝꯍꯥ ꯏꯕꯨꯗꯍꯨ ꯅꯤꯡꯉꯨꯔꯁꯤꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯔꯥꯕꯣꯅꯤ ꯒꯨꯝꯕꯀꯔꯅꯤ ꯕꯤꯕꯤꯁꯣꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯍꯤꯃꯥꯂꯣꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯜꯂꯦꯗꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤ ꯀꯔꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯝꯍꯥ ꯃꯕꯨꯗꯧ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 10,000 ꯑꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯇꯣꯞꯅꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯊꯛꯇꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯐꯥꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯝꯃꯛꯄ ꯖꯩꯒ ꯑꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯅꯥꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄꯦꯔꯒ ꯃꯈꯣꯡ ꯅꯥꯃ ꯊꯥꯡꯂꯒ ꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯁꯥ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯦꯔꯒ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯐꯝꯃꯦꯔꯒ ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯡꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯞ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯕ ꯁꯣꯚꯥ ꯇꯦꯗꯤꯡ ꯁꯂꯥꯏ ꯀꯣꯇꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯨꯝꯗꯨ ꯑꯍꯥꯀꯥ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥꯡꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯔꯥꯕꯣꯟ

ꯀꯔꯅ ꯕꯤꯕꯤ ꯁꯣꯟ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥ ꯏꯕꯨꯗꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥ ꯏꯕꯨꯗꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ ꯃꯨꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯃꯝ
라본 마하라즈 예행이라가 브람하나 세세 라본 낭기 아둥러브 톱다네 브람하 아이빌레 낭기 아빠마 보니저로드나 딱비 브람하기 바이카도 헥다바카나 라본 마하라즈 네부다 나나이부는 시비라바나 나이부 잠비바타르거디 오졸 오모퍼더비 피더비유 마이데 싱다 싱다 파다 아스라 쿠라이나 타바다 시더브 족가야 아픈 시바둥러브 오모르퍼더비 파마두 비비오드나 보르힉니레 वाद हेक्ता बकांदे सिस्टी कराता ब्रह्मादन मतना आय राबोन यादि यादि यादि नंदी ने अदुंगला बा पत्ता बा अदुंगला बा मिशोने नंदी जाती अदुंगला बा विशेषण बा ब्राह्मण ना पावुंग ऐर बसु अपोक्वीन ना मानन हिंसा भी निगोनी अदु नत्ता बक कर्म कया नंग अदु लांगी बा अदुंगला बा नंग ना दुदो ओजो और मोट पदे भी फम वे अदो वे भी यारो ऐ पी बंग मोय अदु नत्ता बा अतो बा बोर में नियो ब्रह्मायु वारो तावकांड रावण महाराज ने बुधाओ ऐ अतो बोर पामजदे ओजो ओमोर पद भी फम मधु खतनी मधु पीबी दब तार बदि लिंग भी खरो दन हंकली ब्राह्मण हे यारे यारे नंग अदु न अदु दे ऐ पी बनंग सुम गम ऐ चले ब्रह्मा मतम ब्रह्म लोक ते लिंग करे जेदगे रावण मखा तान मतम ब्रह्मा अमुक तो कन्न मतम दु तौरखी जन्म तौर बज के आम कोई न तवी है बदा अदुंगलावा अर्जुन अमा मतम राबोन मदु तो पदु तोर पुगि मनुंग दा राबोन खली अई न पामि बोर सि फंग फंग र अदु ओइबा तार गदि अई कोक तारा पाली बसे अदुंग लबा सही लिसिंग अम हेक फार्क पकारन दे अई कोक म कक थले रग मदु दा अग्नि दाहोन मई मेनुंग दा दान तोर गे दन छले गदि राबोन महाराज न बदु तोप तोर पसि एक बसर सही अम हेक फार्क पगा नाकल गि थांग र सले रग मागी मंगक नाम थमत कक्कल का अग्नि दाहोन में ये मैंने तो मंग तुमको नाम कले सुंदर तो नमक को का मम मतंग मतंग मतंग मतंग मतंग मतंग मतंग कक्त दाहोन में इधर कलक पकाल दी दी मागी अधुगल मको मापल दो हिक शुगरे मको तरासी कक्त न मरुदा अग्नि दाहोल दो लांग गेन हिक लांग पकान द ब्रह्मान मांगे मन मधु न मसीद अंगक पनी मागी मांग दे चत बयाद रे न शशि करता ब्रह्म अमुग लेंगे रावण महाराज ये गेरा आय रावण एको एको एको नंग नको अदो मापन दि कक्त न मई द कट करे नको अम दो थमगो नंग कक प यादरी नंग अपाम बो निरोद ब्रह्मा न ता पीरे मतमरु द रावण महाराज नि बुधो ननाय ऐन पाम जबदि ओमो ओजो ओमर पद बि फम दो पीबी न त्रबदि आइगी कोक अम लेरि बसे मसि कक्त न अग्नि दा होन मेगी मेनुंग द कल्लनि यदन मरुदा हंकल बका न ब्रह्मा न सेसे रावण ऐ इबुधो वा हाइके तारो नंग कोक अम दो कौरन अदुनो ओजोर ओमोर पदे बिग चप मानाबा अदुना सर्ग मर्तान पतान त्रिभुवन मलोल अहुम सिगी मनुंग नुद कनागी देव लाय गंधर पर किनर दानो लेली बहु पामत की बपुन मसिंग दो नान खोट खोन मदुद नंग न माइथी बपी बंगम जरो मसी ओइर बदु ओजोर ओमोर पदे बि फंग मान रेने राबो हादन ब्रह्मान तापिर वकाल दुद रावण महाराज न खली लाइसु ऐन गम्मबा गंधर्वसु ऐन गम्मबा किन्नर दानो कनागी महु पान मयाम पुनम सिंगि से सर्ग मर्त पतान मरोल हुम लेरिबा पुनम सिंगि से ऐन गम्मबा तारगदि ऐ यारे हादन मतम दुद ब्रह्मा मबदगि सुरोल दुदि बुधा ओजो ओबोरे पदबि फम दुग चप मानाबि बुधोन पीबिरि बदो मदुन नाय ऐ याजारे अदुगने ऐन नंग

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूर्त जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक
5: श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारियों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स .in, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जडमरू मध्य के खुलने

0: से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम

बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

आज मंगलवार कार्यक्रम महफिल में प्रस्तुत है कुछ नगमे। ये पहला नगमा है पंकज उदास की आवाज में। जफर गोरखपुरी और पंकज उदास की ही लेखन में ये गीत है। संगीतकार पंकज उदास और इस गीत में नजर आई थी अभिनेत्री समीरा रेड्डी और इस गीत को लिया गया है एल्बम द स्टोलन मोमेंट्स।

अभिजीत की गायन में, उन्हीं की ही एल्बम तेरे बिना से ये गीत है। नुसरत बद्र की लेखन और शब्द ऋषि द्वारा संगीत। इस गीत में खूबसूरत सी ये अभिनेत्री है दिव्या खोसला कुमार, जो नज़र आई थी अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

महक एल्बम से ये अगला गीत है फौज भाइयों के लिए पंकज उदास की आवाज़ में, और इसमें नज़र आए थे जादू करता हुआ, सबका नूर बन गया था ये अभिनेता जॉन अब्राहम। गीत के लेखक नुसरत बद्र और संगीत प्रदान किया अली खनी ने।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में महफिल। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में ये गीत है आर्यंस बैंड की तरफ से और गीत के लेखक जय वालिया, संगीतकार ललित सेन और गीत है ये हवा।

गायक अभिजीत की आवाज़ में ये गीत है महफिल कार्यक्रम में उन्हीं की ही एक मशहूर और कामयाब एल्बम तेरे बिना से। गीत में अल्फाज नुसरत बद्र द्वारा और गीत के सुर शब्द ऋषि के हैं।

1: ꯃꯄꯨꯏꯕꯨ ꯉꯣ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯃꯄꯨꯏꯕꯨ ꯉꯣ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎꯊꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ
0: उकाय फालो अंका पसी ददी सरे पिदा नगद बनी अके यमो हिदा नगद बनी के गे मुरांगले पाकी हराव कुमे विचाव न पंग थू बनी येदना आई बुंगोले काई लाख पाव धारी रग यवागी म पाव दो लाव रगलेव मतम नी दो अशोम दना कम दौड़ी आई भी मई भी मम लांगले म शाई भी म थोई भी दो कुमसी कुमजा सीदा मनाई सिनुआ चांबी सिंगनी येंगे की ता सिनुआ चांबी कुमसी कुमजा सी मदीने इपले बुंगो मोइरांग निंग थौना लमलेली कोबलाई पले सोइदा निंग थी ngang ba कौरेन सन फाब मतम मदुदा कुमली बुंगो नो याई मसा खंबदा सिनु अया कुनी कुमली बुंगो नो याई मसा खंबदा थाजखि बतु मसी फाउबा कुमली बुंगो नो याई मसा खंबगे मफम दाय हांगना सिंगे लेरांग फजेब म पीदि ताउजिंग हैरांग फजेब म पीदि चरे फी मसक थुब अम त सु पीब ngam दि दो अदुना नि सिनु वचान बि मसे कोरो नुंग जादगी इबदो थांगजिंग पलेब नरी हाइरि रगा पाइम खुइजंग ना ऐ खुइ यनि न ने चरे फी माबु सारि रगा इबुंगो तुंदा चरे फी अम तंग दि पीसी हाइबबु ता करी खन बकी मजाय बि मा मजाय बि मन हाय बि बदो ननाय सिनु हाक सु जासे अदु वेर बदी चरे फी माबु सानन ब थौरा मसी तना ममु

0: Ai, Shaqui! Shaqui! Ai, Shaqui Tombi! Ai, Toro Laun Hei!
1: Kari hai bunu moi baba. Kari no lai khom lai nang itai he tain khai. Sor thabe thabe ho laga lai sibu. Kadai sa lubanu hai ba.
0: Era, labuk de sa lubani. Ibe ma, labuk to, loi ho re. Mariang na amuk toi fa pung hong ho re. Masi masi, pat bu bau bu ya ho rubani ne nang ba.
1: Hai ma. Adu di kam dauk dori ba.
0: Ai, kam dau ba hai bu. Usa wasa khara pu re gane. Yung sa luri bani ne ai gi se. Nang na kang po na tien he. Usa wasa sing adu hon bada ne. Karwai. Al wa shalak na bishin ne. Pangan su ya udra ma ne. Taba kitang hek dau ru bada ne. Hak sang se. Sa dau hek da thongi. Ah, nang bu. Cha gilas amatang lo la udana. Ak tang po tha ke.
1: Chabudi ngasai na lo la bani ingbu ingamani ai amute yeu khigi
0: nai khun he hingon matun gi uyok sida puine khong ibsi bu kali muk tor ja nu ne ngara ngai ni uchar khar tharam bu do makut yo angang sing amuk phuk tal lam na amuk te yeu khigi hai hai hai arang bi nang na khong li bu kana de nun he hai thon ba nang di ke do ri ba Meng maka amat terlalu domba kei. Hui na cik loitro. Hei, aiki hui se, yam tau budi ko. Kita betul nunang.
2: Ba, usi amat ter kapta gini sumye lamban ida.
0: Kari, usi kap ke hai ba. Hai, ipan gisi tu dina. Usi kap pa hat pa yate ko. Ha, chalo, chalo, chalo, chalo. Matung dan nauri ka pahari ka ne. Ipan gi uyok si da amu hana chalo kanu ko. Lamblak ki sa usi hat pa gi ne. Chairak phangjani hai.
2: उसी एक सिंह सिबु इपन ने लोई भी वहाँ सिबु
0: ये लोई के ना लोई लोई ना हाथ पे याद है इसने
2: इस
0: चलो हाय भाई याद रख दी ना नंग हुई थोड़ी लड़की ना ताने हनी को हाय रंग भी चलो चलो चलो चलो
2: हुई थोड़ी लड़की ने हाय चलो चलो चलो हाय बच्चे वो हनी को नंग वो सरकार ना उसी की चौकीदार ने आप रहा
0: ठीक है योंगी मचा सीधी टैक्सी का सीना मरोल में खंग दी बा करम मचा नोनी मची बा हेरा
1: ओ मोई बाबा कना गनो मुगलांग नरी दुगो या संग ग पसिदा अ छुम दे संग भी रओ चा से इंखरनी ए
0: आ से मखा ले गे ये लुखोई जी मचा थुम बा हाइ ब्र करी नो मेट्रिक त मार फेल होइ बसे
1: आ
0: नाउरी ये म पाइर ग उसी काप ग तो बदगी लुंगन ले रम यमी ने
1: हेरा काप के काप से सनु मोई बाबा अंगाव फैसिंग दुगा माने बहुने तेदा
0: हे मदु हे ग्याब्रन हे नो गान बिदगी लबुक लमहां उमंग वमंग सिंथुंग न कोई पाई पाई दुना चकता रु रे अदुगा निमित्ता रे हरगा मकोंडले हुरी ब मसा मसुगी दमक तिन कांग अममदंग मसिन द चिक लगा पाइसल लई अदुगा ने मकोन यंगम दन लमहां द हतुक बि सिबु हौनो ब थबक लने हे मसिबु करम ब धर्म नुने यादे यादे यादे मदो आई खक यादे को
1: अदुबु मोई बाबा आई खोई न उसे एक सिंसिबु ngak chen ba hai ba che ngam loi ne
0: ngam loi hai bdo ai su khangin he adubu udre bdi udre au ba makai di usi ek singa sibu nga pi chen bi ba hai ba che ai khoi thong ni ko
1: a moi baba
0: nang su khang dani yung ne ayuk angan ba amadi numidang waram gi tan ja sida uyok sing sidagi उसी एक सिंह सिना पाइथा पाइथा रक्तुना नंग न थाजरी बा कोबी हंगाम खमी न सिंह बा इंसान नापी सिंह सी दगी फारी बत्तिन गांग सिंह से ऊरबरा मकोई न फादोक पदगी चिंजंग काजंग दवा तक तक त्येक पर मना मसिंग एकोई न साब फंगी बनी नहीं मधु खंगुन है इबे मा
1: होइ ने मोई बाबा मकोई न फादोक पसी न ओए बताई एकोई की इंखोल की इंसान नापी सिंह से तिन अमत तंगी है ता दे को
0: नंग सुमधु दी खंगबरा मधु ननी आई न उसे घर पे यादी हाई न हाई जो से मखो ऐसे मियो भाई कोई मतें याम न पांखर पुनी ने
1: अदुदी मौई बाबा न लबुकता उसा वसा मया मम युंग लोई हाई बदो आई दी करी गिनो हाई न खली ने मधु दा उसे मया मम तोंग लगा लाउ दगी तिन फादुक न बो ओए रे को
0: नंग सुबाब खर दिता रे तना
1: होय
0: उसे हाई बसे ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅꯅꯦ

0: 마땅 따르기 장어세 땅 카염디 한터라가 미워이바 코이다 까나한 거 노림니냐
1: 어머니 봐봐.
0: 허직 딜라 이트레드나 우식 막할 거야 아마 오 농시분이다 서로의 해보 우식 무사도 띵강 파브디 하이크라바 아 마눙데 마요원데 생바 띵 파우바 셉타 셉타 이잉르가 파브 엄마니 아두보 우키드라 우멍워멍 국토록 것이다 아잉가 사기 간 까력분의 말은 뭐일까 뭐 코일레 이번 엄드러마니 아두나 후직디네 우시에까 세 간드비 아딘 헤이비마
1: 아도 ngai khone moi baba
0: 아
1: usi masa sing dubudi tin kang phare phare acha uba umai bi langja ka haiba dudi apum masa sa bani hai makhoi dudi mangki basa kai su kai di dana
0: ये अंगा विषिदिया हाय मखोई दुनीने आई खोई द मरु ओइना काना हली बो सेतिया चिंगनुंग मानुंग लमहांग तुमहांग पत्तने पुमने लेरीबा फट्टा हाउडी अपुम असा मयाम दो आई खोई मियो बिन मिन उबंग अमद्रब मही कया म यावरी मदुने नुंग सित्त काई दोंग लगा आई खोई मियो बगी हक्सांग द चंखी मदुने मरम ओइरगा लैना मखल कया म आई खोई मियो बिन नहली अदुगुंबा महिक मतांग याउरबा अपुम आसासिंग अदो मखोइने साथोकलबदि मियोइबेन हक्सांग फना नादेयक्तने लेबंगम गदुरमनिने अदुना मखोशो मरुओइबो सिंगाक्तनिने
1: होय
0: इशोरने सिमलक लिबा जीव खुनिमक लोइना अमग अमग मतिंग पांगलो बंगाक्तनि मदो आइखोइ मियोइबेन खक खंथरु दिन हे हाय न दिन हे वारी से सुम तौरिङेसिदा सा इसिंग होनेरुरोने थेंग्रनिने 아이 중 학교 보타기네.
1: 아, 호이 호이 모이 봐봐. 아이 화나루라게.

0: ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯦ ꯂꯨꯝꯂꯒ ꯂꯥꯞꯂꯧ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯎꯊꯔꯒꯁꯦ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯁꯨꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯈꯤꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯨꯗꯨ ꯑꯁ ꯄꯥꯛꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯁ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯈꯔ ꯀꯨꯡꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯏꯝꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯔꯛꯇ ꯄꯥꯏꯊꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯁ
1: ꯏꯆꯥꯁꯥ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯏꯆꯥꯁꯥ
2: ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒꯦ
1: ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯅꯆꯤꯟꯅ ꯂꯥꯎ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯇꯣ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯣ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯣ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯌꯦ ꯏꯃꯥ ꯍꯨꯒꯠꯂꯣꯁꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥ ꯍꯨꯒꯠꯂꯣ
1: ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯪꯕꯣ ꯅꯆꯤꯟꯅ ꯂꯥꯎ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯆꯠꯇꯣ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯣ
0: ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯔꯛꯇꯃꯨ ꯂꯣꯠꯈꯤꯗꯅꯅꯦ ꯍꯪꯉꯣꯏꯀꯣ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯡꯒꯗꯤ ꯌꯥꯡꯉꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ
3: ꯑꯩ ꯑꯔꯥꯡꯕꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯨꯀꯣ ꯍꯩ ꯀꯅꯥ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯕꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯁ ꯂꯧꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅ ꯍꯩ ꯂꯧꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯔꯥꯡꯕꯤ ꯍꯩ ꯆꯦꯟꯁꯜꯂꯨ ꯁꯨ ꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅꯣꯅꯦ ꯁꯤꯕꯣ
0: ꯀꯗꯥꯏ ꯍꯨꯏꯅꯣꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯏꯃꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯍꯅꯨꯕꯅꯤꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯅꯅꯦ ꯂꯧ ꯅꯩ ꯈꯥꯏꯔꯦꯅ ꯋꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯩ ꯃꯁꯤ ꯍꯅꯨꯕꯁꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯅꯦ ꯆꯦꯜꯍꯧꯕꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯂꯩꯅ ꯇꯩ ꯇꯩ ꯈꯩ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯞꯊꯖꯔꯒꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯁ ꯄꯥꯝꯃꯨꯏ ꯍꯦ ꯄꯨꯝꯗꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ
3: ꯍꯩꯅ ꯊꯣꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯧꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯃꯔꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯈꯔ ꯅꯥꯔꯤꯉꯩ ꯆꯦꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯦꯍꯜꯂꯝꯂꯕ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯦꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯍꯥ ꯄꯥꯄꯤ ꯃꯁꯥ ꯆꯦꯟꯈꯤꯅꯨ ꯉꯥꯏꯈꯣꯅ ꯍꯩ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯍꯨꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯧꯖꯜꯍꯜꯂꯒ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯔꯥꯡꯕꯤ ꯁꯨ ꯁꯨ ꯁꯨ ꯁꯨ
0: ꯊꯧꯖꯟꯗꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯩ ꯆꯨꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯔꯤꯅꯤ ꯀꯝꯗꯧꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯦ
1: ꯍꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯅꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯗꯀꯣ ꯑꯩꯌꯣ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯅꯆꯤꯟꯅ ꯅꯥꯎꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯣ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯃꯤꯈꯨꯠꯇ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯆꯤꯟꯅ ꯅꯥꯎꯗꯤ ꯅꯆꯦ ꯅꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯪꯒꯨꯂꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯛꯎꯀꯣ ꯏꯆꯥꯁꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯃꯥꯜꯂꯦ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯋꯥꯔꯧꯒꯅꯨꯀꯣ ꯏꯆꯥꯁꯥ
3: ꯑꯣ ꯍꯥꯏ ꯎꯆꯦꯛꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯅ ꯊꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯏꯆꯦ ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯗꯣ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯁꯦꯕꯥ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯔꯥꯡꯕꯤ ꯆꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯠꯁꯤ
4: ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯩꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯗꯨꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯏꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯕ
3: ꯑꯩ ꯂꯧꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯩꯈꯥꯏꯗꯅ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯍꯧꯔꯦꯅꯦ ꯃꯃꯥ
4: ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ
3: ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯨꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤꯅꯦ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯄꯠꯄ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇꯨꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯏꯕ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯕꯣꯅꯤ ꯑꯩ ꯎꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯎꯆꯦꯛꯁꯦ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯔꯥꯡꯕꯤꯅꯅꯦ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯇꯨꯝꯅꯒ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯁꯦ ꯂꯣꯡꯉꯨꯞꯇꯨꯅꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯎꯞꯁꯜꯂꯨꯁꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯍꯩ ꯃꯃꯥ aduga aise lukhoi hoidane aruk ta chalu khi ke
4: ngai khong ngai kho mu ta ngai bi kho
3: masanu pa do khara war u hai lu khi ke aduga ne masanu pa du ne le ram ba tho bdi ma gi apam bdo kari no ang ta hang khi ke era thawai u shit ta ba macha
4: adu amuk ta ngai kho ba moi baba phing ni ba ma phing aduga ma khoi gi ma thong huk ta ba ma tau duga as sandagi ta thiba haibado ta dana to kane ba adui saruk de heng ayuk ngan ta khana ra ga sapi ro kai dawrage
3: e ai dine anga mangam ba hek ta thadan na ruge sini miul ga se a yong khrupo ni
4: moi baba ma thong huk ta ba angang sing du ga ne ma na bi ru ranu sau ga na ra ga kari so pha ba pura oi hiram khuding mangne ing na tap na khana ra ga ne loina ma hai phanga da ba ngak ta ne adui sarupu dine ताइरी बले खोम ले नांग मयाम दो अमुक त इरु जथो पिरु रो आइ साक थिरु रगे साक जखो म मचा रग ने नुंग आइन पोथा बिरो
3: ए नाइ खो चक चाब ग लाइरी मागि छे खरे हेन मली ngसी दि ने अता बि म ngang न गदम नि हे हे लम हेन बि सार दना खंग नि ngसी
4: हाय मा सखरे ने तौरी से हो मोय बाबा औ तंग आइ खो बा अस कमाइन तौनी तौरी सि दि आइ दि औ तंग आइ खो मी मी हुन मा ता दुगा सोइ तना मु खना रु तारे मी तौरी से

खुंगंगी थौरम ताबिरे थौरम की अहम सरुकता कोयजम प्रेम कांतदगी पेना लोइनना अनिशुब अरोइब सरुकता याइफयुमबाल किलेला मचा कैगी मपाल नापिनतांग नापिगी मपाल कैनतांग लीला इबा टेकचम विजय सिंह लीला पुथोकपा थोकचम रेनुबला अमदी पुथोकपद तेंगमांगबा हेमचान निंथौजम।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 11 सेकंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवा को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। तो आइए अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म की कहानी की। 1962 की एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सस्पेंस फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म का निर्देशन किया था राज घोसला साहब ने, जबकि मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे जॉय मुखर्जी और साधना शिवदासानी। फिल्म के निर्माता थे सशाधर मुखर्जी और इसका मधुर संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। इस फिल्म की कहानी प्यार, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। कहानी शुरू होती है लेफ्टिनेंट अजय मेहरा से, जो आजादी के बाद कश्मीर में एक गुप्त मिशन पर होते हैं। मिशन के दौरान एक बम धमाके में वे घायल हो जाते हैं और अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है आशा से, जो आतंकवादियों के हमले के कारण अपने घर से भागने पर मजबूर हो जाती है। आशा अजय की देखभाल करती है, उन्हें स्वस्थ बनाती है, उनको सेहतयाब करती है, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अजय अपनी पहचान तलाशने के लिए बंबई पहुंचते हैं। आज की मुंबई, पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। वहां एक दुर्घटना के बाद उनकी कुछ पुरानी यादें लौट आती है, लेकिन पिछले 6 महीनों की सारी बातें वे भूल चुके होते हैं। इसी दौरान बैंक लुटेरों का एक गिरोह उनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि अजय उन्हें पहचान चुके होते हैं। इसके बाद शुरू होता है रहस्य, धोखे और रोमांच का सिलसिला। कई बार अजय की जान लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिरकार पुलिस और अजय की चतुर योजना से अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। अंत में अजय की पूरी याददाश्त वापस आ जाती है और उनका मिलन आशा से हो जाता है। 1962 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, और इसकी सफलता ने अभिनेत्री साधना शिवदासानी को रहस्य रोमांच वाली फिल्मों की लोकप्रिय नायिका बना दिया। बाद में निर्देशक राज घोसला ने उन्हें अपनी दूसरी चर्चित फिल्मों में काम दिया, और वो फिल्में थी वो कौन थी, मेरा साया और अनीता। तो आइए इसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का, और यह फिल्म आई थी 1962 में। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में। और हर सिंगार में बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर, और साथ ही साथ कुछ फिल्मों की बातें भी होंगी। और अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक है, और वो फिल्म है 1967 में रिलीज हुई शागिर, जिसमें है हंसी, प्यार, गलतफहमियां और भरपूर मनोरंजन। जी हां, ये शागिर फिल्म बेहद खूबसूरत और बहुत ही रोमांचक फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था समीर गांगुली ने, और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे उस दौर के लोकप्रिय जोड़ी जॉय मुखर्जी और सायरा बानो। कहानी शुरू होती है रमेश से, जो एक खुशमिजाज और होनहार नौजवान है। उसके गुरु हैं प्रोफेसर ब्रिजमोहन अग्निहोत्री, जिन्होंने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार कब, कहां, कैसे और किससे हो जाए, ये कोई नहीं जानता। एक दिन प्रोफेसर साहब की मुलाकात होती है एक बेहद खूबसूरत पूनम से, और देखते ही देखते वे उस पर अपना दिल हार बैठते हैं। अब मजेदार बात यह है कि पूनम का दिल तो उनके छात्र रमेश पर आ चुका होता है। बस यहीं से शुरू होती है हंसी मजाक वाली बात। गुरु और शिष्य की भूमिकाएं जैसे बदल जाती हैं। प्रोफेसर साहब अपने ही छात्र रमेश से प्यार के गुर सीखने लगते हैं, लेकिन पूनम उन्हें केवल एक सम्मानित अंकल की तरह देखती है। उधर रमेश और पूनम का प्यार परवान चढ़ता है और दोनों शादी का सपना देखने लगते हैं। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शेफाली नाम की लड़की और चालाक मदन शिकागो वाला की वजह से रमेश एक बड़ी साजिश में फंस जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी हल्की पुल्की कॉमेडी और शानदार संगीत था। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की मशहूर जोड़ी ने, और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म में सायरा बानो के शानदार अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। शागिर्द सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि हंसी, भावनाओं और यादगार गीतों से सजी एक ऐसी फिल्म है जो आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुई है। तो जब भी आपको मौका मिले ना, ये फिल्म जरूर देखें। तो आइए फिल्म शागिर्द का ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, जो उस वक्त हर सिनेमा प्रेमियों के जबान पर हमेशा रहता था और लोग गुनगुनाया करते थे, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आंधी फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 11:10 पर लेकर अगला प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो चुनिंदा नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 40 से लेकर 60 के दशक के हैं। आमतौर पर गोल्डन एरा या सुनहरा दौर जिसको हम कहते हैं हिंदी सिनेमा का 1940 से 1960 के दौर का माना जाता है। उस बीच बेहद खूबसूरत फिल्में बनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए फिल्में बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए थे और फिर नगमे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ करते थे। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म से जिसका नाम है आर पार। ये फिल्म आई थी 1954 में। गुरुदत्त साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे खुद गुरुदत्त साहब और श्यामा और साथी कलाकारों में शकीला, जॉनी वॉकर, जगदीप, जगदीश सेट्टी, साथ में थे वीके मूर्ति, कुमकुम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इसको ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज में आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

शमशाद बेगम जी की आवाज में ये नगमा था फिल्म आर पार से, और ये फिल्म आई थी 1954 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और गोल्डन एरा का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म बूट पॉलिश से। ये फिल्म आई थी 1954 में और इसके निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में रतन कुमार, नाज, डेविड, चांद बुरके और राज कपूर वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो इसके गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मन्ना डे साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वो नगमा है जो आपके जिंदगी की नुमाइंदगी करता है।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल देख प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझ रुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझ रुकना नहीं।

फिल्म बूट पॉलिश का यह नगमा था जिसमें आवाजें थी मन्ना डे साहब और आशा जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गोल्डन एरा के इस बेहतरीन नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और गोल्डन एरा का दौर, जैसा कि हमने पहले बताया कि वो दौर था जब सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बना करती थी। ये वो जमाना था जब भारतीय फिल्म में केवल मनोरंजन का जरिया नहीं थी बल्कि समाज, इंसानियत, मोहब्बत, गरीबी, इंसाफ, ख्वाब और जज्बात की गहरी तर्जुमान हुआ करती थी। और ये नगमा भी अभी आपने जो सुना वो भी कुछ ऐसा ही नगमा था। इस दौर की फिल्मों में अदब यानी साहित्य, शायरी, संगीत, बेहतरीन अदाकारी और मजबूत कहानी का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और ये गोल्डन एरा में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जो अपने आप में बहुत ही मशहूर रही, और वो फिल्म है श्री 420। इसी फिल्म का एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये फिल्म आई थी 1955 में, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था खुद राज कपूर साहब ने और साथ ही साथ राज कपूर साहब ने इसमें अभिनय भी किया था। उनके साथ थे नरगिस और नादिरा और भी बहुत सारे कलाकार थे। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: Bun?
1: हम
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्त के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं और कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमे हैं जो हम आपके लिए खास तौर से चुन के लाए हैं। तो इस महफिल में इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और यह फिल्म आई थी 1955 में और यह फिल्म है जिसका नाम है आजाद, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आए थे दिलीप कुमार साहब और मीना कुमारी जी। साथ ही कलाकारों में ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शम्मी और एस नजीर के साथ साथ मुराद वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है सी रामचंद्र ने। हालांकि इस फिल्म के संगीत के लिए पहले नौशाद साहब को अप्रोच किया गया था लेकिन वक्त की कमी की वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में सी रामचंद्र साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया और वो संगीत अमर हो गया। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी और उषा मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आपके लिए

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं, गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है और उन्हें बार बार हम सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं 1956 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म CID से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस फिल्म का निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इसके निर्देशक थे राज खोसला। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद और शकीला थी और साथ में वहीदा रहमान और साथी कलाकारों में KN सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन और जगदीश राज वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे उन्होंने ही लिखे हैं लेकिन एक गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया जिसको लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने। और इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो ये फिल्म है 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब के निर्माण और राधु कमलकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था खुद राज कपूर साहब ने, पद्मनी प्राण और उनके साथ थे चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर और सुलोचना चटर्जी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और साथ ही साथ शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, लता जी, गीता दत्त और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, साथ में हैं मन्ना डे साहब।

0: जी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले दो से तीन दिन तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi last evening. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. The Qatar Amir expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. The Ministry of External Affairs has confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
4: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
3: Meanwhile, Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay has announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan, and singer Alka Yagnik are among the decorated recipients. This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan, and 113 Padma Shri Awards. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, continuous meaningful work is underway on subjects like post-harvest management in agriculture, value addition, export promotion, water management, use of modern technology, and increasing farmers' income. The minister participated in the Interministerial Conference on Transformation of Indian Agriculture held at Krishi Bhavan in New Delhi. In a social media post, Mr. Chauhan said,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेला, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा। उस घर में मैं हर शाम अपनी थकान उतारती थी, जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। मैंने तुम्हारे सामने कभी जोर से दरवाजा नहीं पटका, बस धीरे धीरे कम बोलने लगी। तुमने इसे मेरी आदत समझ लिया। तुम नहीं जानते कि स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं। कि कितना दिया कितना बचा। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना मेरे दिनों की थकी हुई डालियों पर, जहां प्रतीक्षा ने अब तक केवल धूप गिनी है और छांव को याद किया है। तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, ये समय के माथे पर धैर्य का टीका है जो बताता है कि प्रेम हमेशा तात्कालिक नहीं होता, कभी कभी वो मौसमों से धीमा चलता है। बसंत मालती, मैंने तुम्हें हर वर्ष नहीं पुकारा, क्योंकि जानती थी हर पुकार का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर जड़ों में पकते हैं, मिट्टी से सलाह लेते हैं और फिर फूल बनते हैं। बसंत मालती, तुम्हें पता है प्रतीक्षा कैसी लिखी जाती है? न घड़ियों से, न कैलेंडर से, बल्कि उन सांसों से जो अधूरी रह जाती है और फिर भी टूटती नहीं। जब तुम खिलती हो तो कोई घोषणा नहीं करती, बस हवा का मिजाज बदल जाता है। पत्तियां समझ जाती हैं कि अब प्रेम को अपने प्रमाण देने होंगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर बहुत सी अधूरी पंक्तियां संजो रखी हैं, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, जो संयम से पली और भरोसे से बड़ी हुई। तुम फिर खिलना बसंत मालती, तुम फिर खिलना, ताकि यह यकीन रहे कि एक बार फिर से जीवित रहे, कि प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती, वो प्रेम की सबसे गहरी तैयारी होती है। बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना। अगला गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में, फिल्म का नाम है जुर्म।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कर्ज, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मिलते हैं 1:10 पर गीत सुहाने लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

धूप के कंधों पर दिन उतरता है, धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी के याद की खुशबू तैरती है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। पत्तों की सरसराहट में जैसे किसी अधूरे वाक्य की आहट सुनाई देती है। गली के मोड़ पर ठहर गई है हवा, जैसे किसी अनकहे नाम को पुकारना भूल गई हो। फूलों की महक अब केवल महक नहीं, वो किसी बिछड़न का मौन संवाद है। पेड़ों के साए लंबे हुए हैं, समय के पन्नों पर फैले हुए शब्दों की तरह। शाम के माथे पर सिंदूरी आंच है, पर भीतर कोई धूप अब भी ठहरी हुई है। और मैं सोचती हूं, क्या हर बहकी हुई हवा में कभी तुम्हारा नाम भी घुला था, या वह बस ऋतु का छलावा था जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है, जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आजाद, आवाज है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती।

गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। अब जब ऋतुएं बदल चुकी हैं और कई रास्ते अपरिचित हो गए हैं, तब भी वो दिन मेरे भीतर वैसा ही रखा है जैसे किसी पुराने आंगन में बिना देखभाल के भी तुलसी का एक पौधा अपनी हरियाली बचाए रखता है। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात, आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी आपको जिस गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है हम दोनों। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 2:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की देहरी कोई आंगन नहीं, मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। मैं इस चौखट पर वर्षों से बैठी हूं, अपने ही शून्य के भीतर तुम्हारे नाम का दीपक गढ़ते हुए। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है, जो भीतर के अंधकार को सत्य की ध्वनि में बदल देता है। प्रिय, तुम आओ ना देह बनकर, न किसी शब्द की तरह, बल्कि उस अलौकिक आलोक की तरह जिसमें प्रतीक्षा खुद दीप बन जाए। जब तुम आओगे तो मैं ये देहरी पार नहीं करूंगी, बल्कि ये देहरी स्वयं भीतर खुल जाएगी और मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, अब किसी राह से बेवजह मेहमान न भेज। मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मेरे हिस्से कोई फिर से नई पहचान न भेज। जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, उसके लिए मेरे दिल का कोई अरमान न भेज। मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है धरती, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग, लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है इंतकाम, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की। तो फिर मिलने के वादे के साथ आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना विसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि यादों की खुशबू बनकर दिल में बस जाते हैं। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार भी एक इबादत बन जाता है। ऐसी ही गहरी भावनाओं को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और भूपेंद्र ने फिल्म एतबार के इस गीत में। तो आइए सुनते हैं फिल्म एतबार का ये दिल को छू लेने वाला नगमा।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका इंतजार बरसों तक दिल करता रहता है, और जब अपनों से या किसी खास शख्स से लंबे अरसे तक मुलाकात नहीं होती है, और जब मुलाकात होती है तो खुशी शब्दों में बयां नहीं हो पाती। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पूरा पिरोया है फिल्म राम लखन के इस मधुर गीत ने, जिसे आवाज दी है मनहर और अनुराधा पौड़वाल ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने की चाहत हर धड़कन को रहती है। प्यार जब अपने एहसास का इजहार चाहता है तो शब्दों में एक मीठी सी बेचैनी और अपनापन झलकने लगता है। फिल्म तेजाब का यह गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

3:35 और 38 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। वक्त की रफ्तार चाहे दिनों महीनों और सालों को गुजार दे, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट और अपनापन कभी कम नहीं होता। दूरियां बढ़ सकती हैं, मगर दिलों के बीच की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। फिल्म अवतार का ये मधुर गीत इसी अटूट साथ और इंतजार से खूबसूरत एहसास को समर्पित करता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी की असली दौलत ना तो सोना है ना चांदी और ना ही कोई अनमोल रत्न। अगर दिल में प्यार और साथ का भरोसा हो तो हर ख्वाहिश पूरी लगने लगती है। ये है फिल्म हीरा पन्ना का गीत, जिसे आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़।

दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि यादों और अफसानों में भी जिंदा रहती हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसकी गूंज वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है। फिल्म पिघलता आसमां का ये मधुर गीत प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार जब दिल की गहराइयों से निकलकर दुआ बन जाए तो हर दूरी मिटाने की चाह और भी बढ़ जाती है। मिलन की उम्मीद साथ निभाने का वादा और एक दूसरे में खो जाने का एहसास, यही तो मोहब्बत की

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो है फिल्म एक दूजे के लिए। और बस यही कहेंगे कि जब दो दिल सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया रचने का सपना देखते हैं तब प्यार एक नई कहानी बन जाता है। उम्मीद, विश्वास और सुनहरे भविष्य की यही भावना समेटे हुए है ये मधुर गीत। आवाजें एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत की अहम भूमिका दिलाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 और 55 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और एक बार फिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

धैर्य की और अच्छे विचारों की। इसी भावना को बेहद सुंदर शब्दों और मधुर स्वर में पिरोया गया है फिल्म गुड्डी के इस प्रेरणादायक गीत ने। आइए सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में ये गीत।

जीवन की राहों में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। उम्मीद की छोटी सी किरण भी इंसान को आगे बढ़ने का

हौसला देती है। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने सपनों का दामन थामे रखने की। इन्हीं भावनाओं को बड़े सलीके से सजाता है फिल्म हाउस नंबर 44 का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनमें अपनापन भी होता है, भरोसा भी, और प्यार की वो सादगी भी जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। फिल्म दोस्ती का ये मधुर गीत इसी अनमोल एहसास को सुरों में पिरोता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 4:27 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। जिंदगी में इंसान का साथ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके अच्छे विचार, उसके संस्कार और उसकी दी हुई प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। समय बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन प्यार, अच्छाई और यादों की खुशबू कभी नहीं मिटती। इसलिए जीवन में ऐसे निशान छोड़िए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मुस्कान बनकर महकते रहें। कुछ इस तरह जैसे ये गीत है फिल्म ममता का, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी और आसान राह नहीं होती। कभी मंजिल बदलती है, कभी रास्ते। लेकिन जो इंसान हालात के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, उसके लिए हर मोड़ एक नई शुरुआत बन जाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, नए रास्तों को पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं बल्कि आगे चलते रहने का नाम है।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में जब भी उम्मीद की खुशबू बिखरती है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जैसे रजनीगंधा के फूल अपनी महक से वातावरण को सुंदर बना देते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। मुस्कुराते रहिए, सपनों को संजोए रखिए, क्योंकि खुशियों की सुगंध वही महसूस करता है जो उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ता।

0: दोस्तों, फूलों की तरह जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी खुशबू और मुस्कान कभी कम नहीं होनी देनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, मौसम बदलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखता है, वही हर दिन को एक नई उम्मीद और नई शुरुआत में बदल देता है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास भी खुशियों की महक बिखेरते रहें।
1: ठीक है, ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे।
3: सुनो सुनो,
1: अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

दोस्तों, बहती हुई नदी हमें एक अनमोल संदेश देती है, ये तो सभी जानते हैं। रुकना नहीं, थकना नहीं, जीवन की राह में आंधियां आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय की धारा बहुत तेज है, जो ठहर गया वो पीछे छूट गया, इसलिए हर नई सुबह के साथ अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए।

जिंदगी की असली खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी है। जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं और बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास दुआएं हैं, और सबसे बड़ी सफलता वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमके।

200 कार्यक्रम के अंत में बस यही कहूंगी कि ये जीवन अनमोल है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन हर इंसान इस दुनिया से विदा ले जाएगा, पर उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें अमर हो जाती हैं। इसलिए समय की कीमत को समझिए, हर दिन को पूरे मन से जिए, रिश्तों में प्यार बांटिए और ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके नेक कर्मों से बने। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्म करम और मुझे अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक किसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आए दिन बाहर के से।